की जुगत गुरु के पुत्र हो गए ते गुरु के पुत्र सत्संगी जिथे मिलके बैठ के प्रभु जस करदे ने जेड़ा आके उन्हां सत्संगियां च रल गया गुरु पुत्रां च रल गया प्यार दे रंग च रस्ता होया प्रभु जस कर रहा है प्रभु जस मान रहा है और ये धर्म का मार्ग धरती दे धरन वाले निरंकार प्रभु ने गुरु दे रूप च आप धारण किया आप बनाया इस मार्ग ते जेड़े चलते ने त्रम पंथ तरयो तरनी तर आप जेड़े इस मार्ग ते चलते ने रहे लिव तार न कहावत है भटकना मुक जाती है लिव जुड़ जाती है जीवन का आनंद लेंदे ने भगत भट्ट मथुरा जी कहंदे ने कहंदे ने वड्डे भागा वाले ने लोग मथुरा पन भाग भले उनके मन इच्छित ही फल पावत है उन्हां दे मन दी इच्छा प्रभु प्यार नूं प्राप्त करना और ये फल प्राप्त कर दे ते कहंदे ने उन्हां नूं फिर रब दे सुत सूरज दे पुत्र धर्मराज दा डर नहीं रहिंदा रब के सुत को तिन त्रास कहां जो चरण गुरु चित लावत है जेड़े गुरु चरणा नाल मन जोड़ लेंदे ने उन्हां नूं नरक दा डर नहीं जम दा डर नहीं ते ना ही किसे सुर्ग दी इच्छा रह जांदी गुरु चरणा दे प्यार च गणूंद होए आनंद लेंदे ने रंग च रते होए

कर कृपा दे और नाम है मर्सी ऑफ ऑन मी एंड गिव मी योर नेम नाम सात जना की मांगो तो आई वांट द डस्ट ऑफ द फीट ऑफ सेंट्स नाउ द पीपल फार फ्रॉम मे सदापुर दिस इज माई डिजायर ओ गॉड ओ लॉर्ड काइंडली फुलफिल सदा सदा प्रभु के गुण गाओ Another desire, I always repeat your name again and again. Saas saas bhato me dhao, saas saas saas grass. The breath comes and breath goes. I always meditate upon you. Charan kamal se lage preet, I भगत करो प्रभु की एंड ऑलवेज डिवोट अपॉन द नेम ऑफ गॉड एक एक ओट एको आधार और ओनली वन सपोर्ट एंड वन व्हाट इज दैट नानक मांगे लागू आई ओनली आस्क फॉर द नेम

लाल खोई है, फिर ए अवसर कद लाहां। गुरु की बाणी कह रही है कि ऐ मनुख तू अमोलक हीरे लालां तो भी महंगे अपने श्वास धंधियां विच बिता के माया नू इकत्र करन लई तू सारे ए लाल अजाई गवाई आउना है। ए दुनिया दे पदार्थ दुनिया दे सुख ए टुटे हुए कच दी दियाई हन, जिना कोल धन दौलत दुनिया दे सुख हन आवेख जाके ओ कितने चिंतातुर हन के किते कोई चोर चुरा ना लवे, किते कोई होर ना लै जावे, किते कोई होर मुसीबत ना पै जावे। जिस ग्रह बहुती तिस ग्रह चिंता, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहंदे आ जिस घर विच बहुती माया है उत्थे बहुतियां चिंतावां दा निवास है, क्योंकि डर है कोई चोरी ना करके लै जाए, रात नूं नींद नहीं। सद भावना रखण वाला उस मालक दे हुक्म विच रहण वाला एक गरीब तां अपनी नींदर सौंदा है अपनी उठदा है, पर धनवान बंदे नूं नींद नहीं पैंदी भई मते कोई चुरा के ही ना लै जावे। उच्चारण करो श्री आख्या ऐसे धन तो तैं की खटिया, काच बादरे लाल खोई है, तू अमोलक श्वासां दे लाल दे के ते दुनियावी पत्थरां नूं खरीद के अपने आप नूं बड़ा धनवान समझना है, बड़ा बलवान समझना है भई मेरे वर्गा कोई नहीं। पर याद रख जदों प्राण पंखेरू उड़नगे एक छिन विच सब कुछ पराया हो जाएगा। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। पुरातन समय जो शाहूकार होंदे सन ओ लक दे नाल सोने दी जंजीर पा के रखदे सन। कबीर जी देख रहे सन जदों एक धनवान गुजर गया शरीर छड गया ते जदों लकड़ां ते पान लगे ना ते घर वालियां दा ध्यान उस जंजीर ते पै गया ते आख्या भाई ये सोने दी जंजीर किधर लै चलिया, उसे वेले तोड़ ली। कबीर जी वेख के हैरान हो गए, आख्या कौडी कौडी जोड़ के जोड़े लाख करोड़, चलती बार ना कुछ मिलियो लई लंगोटी तोड़। की लै गया भाई नाल की जाएगा, हजूर कहंदे नाल इना जिहड़े अमोलक श्वास तेरे हन इना नाल नाम दे लालां दा वणज करेगा, ए लाल तेरे नाल जानगे। धन गुरु नानक पातशाह जदों दुनी चंद दे पास गए हन बड़ा अमीर सी, हजूर कहन लगे नाल तां इक सुई भी नहीं जानी ते तू इना धन कट्ठा करी फिरदा। कहने लगा महाराज कृपा करो मैं बड़ी औखी कमाई कीती है ते कोई ऐसी जुगत दसो जिदे नाल मैं नाल लै जावा। हजूर कहन लगे भाई नाल तां लै जा सकना है तू जे साडे आखे लगे, महाराज हुक्म करो। कहन लगे जितनी माया कठी कीती है लोड़वंदा नूं वंड दे उहदे नाम ते ते तेरे नाल चली जाएगी। उचारण करो श्री। इसलिए हजूर बख्शिश करदे हन ओ मित्रा धन तां तू नाम दा इकट्ठा करना सी ते हुण द्वार द्वार धन लई तू भटकदा फिरदा, तैनू सोधी नहीं है कि इना अमोलक श्वासा नाल उस परमेश्वर दा नाम भी जपी दे। इसलिए मित्रा

वो शास्त्र वो सिमरती पेखे सर्व टटोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। अष्टपति जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमरत वख्यान जोग अभ्यास कर्म तर्म किरिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनेक प्रकार किए वो जतना पुन दान हो में वो रतना शरीर कटाए हो मैं कर राती वर्तने म करे वो पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे महा उदास तपी सर थीवे अगन माहे होमत पुराण कनक असव हैवर भूम दान न्योली कर्म करे बो आसन जैन मार्ग संजम अत साधन निमख निमख कर सीर कटावे तो पी हो मैं मैल न जावे हर के नाम समसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ दे छूटे गर्भ गुमान न मनते हुटे सोच करे दिन सर रात मन की मैल न तनते जात इस देही को वो साधना करे मनते कबू न बिख्या टरे जल तो वह बोधे अनीत सुध कहा हुए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊंच नानक नाम उतरे पतत बहुमूच बहुत सियानप जमका पौ व्यापै अनक जतन कर त्रिसन ना त्रापै एक अनेक अगन नहीं बुझे कोटु पाव दरगे नहीं सीजे छूट सनाही उब प्याल मोह व्यापे माया जाल अवर करतूत सगली जम डाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोले सहज सुपाए चार पदार्थ जे को मागे साध जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सद गावे जे को अपनी शोभा लोरे साध संग ए हो मैं छोरे जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की सरनी परे जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जाका मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सू गनिये सब ते ऊंचा जाका मन हुए सगल की रीना हर हर नाम तिन कट कट जीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेख है सगल शिष्ट साजना सुख दुख जन सम दिष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा निरतन को तन तेरो नाओ निथावे को नौ तेरा थाओ निमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को देवो दान करन करावन हार स्वामी सगल कटाके अंतर जामी अपनी गतमित जानो आपे आपन संग आप प्रभराते तुमरी उस्तत तुमते होए नानक अवर ना जान सकोए सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्दम में उद्दम फला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी में अमृत बानी हर को जस सुन रसन बखान।

आखन लगे सानू ते दस के नहीं गई। अगे भी जांदी है उन्हें आख्या जी सानू ते कोई भी नहीं पता, असी ते कदी भी राणी नू जांदिया नहीं देखिया। मन विच भरम हो गया राणी किथे जांदी है मैनू दसण तो बगैर। अज दूजा दिन होया इन्हें सोचा भी हुण मैं रात नू ख्याल रखना है, सौना नहीं, देखना है राणी जांदी किथे है। बिस्तर ते लेट गया, अखां मूंद लईयां, सुता नहीं। जदों अद्धी रात दा समा होया ना ते राणी ने सोचिया वे राजा सौं गया है।

0: गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग तो उतर गया, मैं चल फिर सकता। धन रजनी, एक तेरे सदक का फल है जेड़ा अज मैनू नवा जीवन मिले। रजनी रजनी, मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता रजनी, मेरा रोग तो उतर गया रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी मेरे पति जिन्होंने मैं इतने छटके गई सी, कितने ने, कितने ने मेरे पति?
0: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंतपुर नहीं लै गए, तुसी मैं संजी के दर्शन कराए, तुसी मैं गोंदवाल लै गए, तुसी मैं छबील वाले बाबा जी तो पानी पिया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला है रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: यह तो ठीक है, पर थोड़ा रोग किवें ठीक होया?
0: इस सारी करामात इस जल्दी है, थोड़े जाने तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे, तो मैं रिड़दा रिड़दा ए छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी नु फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पए सन।
1: तुसी तुसी टाणी नु फड़ के पानी च गए सी ना?
0: हाँ।
1: केरे हाथ नाल?
0: ऐस नाल।
1: अच्छा, ता फिर तुसी ऐस हाथ नु भी पानी च पाओ, मैं अपनी अखां नाल इस जल दा चमत्कार देखांगी।
0: आओ मेरे नाल।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता के दरबार में क्या सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्म पारे। तन गुरु अमरदास।
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,

सारा संसार कुल खलकत कुल दुनिया मैं मेरे बिच लगी हुई है। ऐ मेरा है, ऐ मेरा है, ऐ मेरा है। लेकिन साहिब कहंदे ने ऐ मनुख ऐ बंदिया कदी ये भी आखी कि सब कुछ तेरा है, मेरा ते है ही कुछ नहीं। जियो पिंड सब दिसदा ये तेरा दिता हुआ शरीर है, तेरे दिते हुए श्वास ने जब तक तू चला रहे हैं वो चल रहे हैं। तो जदों तू चाहे चलते हुए श्वासा संगल पा के रोक सकने, तो फिर साडा ते नाना होया सारा कुछ। जियो पिंड सब दिसदा सब किच है तेरा।

जीओ पेंड सब दिसदा सब कुछ है तेरा मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा सारे आंखों तेरा।

आखिरी वचन सुन लेने। सिफर लगते गए, 1000 हो गए, 10 हो गए, लख बन गया। और सिफर लग गए, मिलियन हो गए, और सिफर लग गए, वधदे चले गए। एक दिन बैठा बैठा सोचता है, कहता है वाह, बड़िया बड़िया कीमती चीजां मेरे खुदा तू छुपा के रखी हैं ने। बोलो सिरे, कहते मेरा बड़ा कमाल दा मेरा रब। सिफर इतने हो गए हुण सांभे नहीं जांदे। बड़ा वड्डा शाहूकार बन गया, बड़ा वड्डा सेठ हो गया, नौकर चाकर हाथी घोड़े लश्कर बड़ा कुछ। एक दिन बैठा है, हुण बुजुर्ग भी हो गया, 65-70 साल की उम्र भी हो गई, हाथ में माला बड़ी, बड़े कीमती पत्थर की मोतियां वाली माला घुमाउंदा घुमाउंदा इहदे मन में आ गया मन, कहिंदा मेरे खुदा तेरे कोल मैं मंगण गया सी ना, ते तू ते मैनू एक ही दिता है, बाकी तो सारा मैं इकट्ठा किया। बोलो सिरे, मैं आ गया, कहल करना, ओही मैं।

जीवन या जीवन शाह नामे जापदा है, जो कि हिंदी सी, मक्के जाके रहन लग पिया सी। होर भी अनेका

इसी तरह ये जीवन सेवा करया करदा सी, सेवा करवाया करदा सी। पर आज जद जीवन सेवा करदा करदा पश्चिमी पासे वाल आया ताकि देखदा है एक आदमी सोता पे ते पैर उसके मेहराब वाल हन। मुसलमाना विच निमाज मक्के वाल मुंह करके पढ़दे हन। मक्के वाल पैर करनी उन्हां विच भारी बेअदबी है। सो उस जीवन नूं गुस्सा चढ़िया ते आके उस सुते आदमी नूं लत मारी ते कहा तू कौन है जो खुदा वाल पैर

तुसा फरमाया सी कि अमल वड़ा है। हवास खमशा नु काबू करना, साई नु प्यार करना है। इना बिन ना हिंदू वड़ा है ना मुसलमान। हिंदू वेद पढ़ते हैं, मुसलमान कुरान। दोहां नु इस पढ़े ने दा

दुनिया दा असर डाढ़ है, खुदा किस तरह मिलता है। ते सुन के धन गुरु नानक साहब जी का रंग पलटे है, जिसनू उन्हां ने खुदा कहा सी, गुरु दिया कोमल दिल तरबां दा प्रीतम सी, नैन उच्चे हो गए ते डाढ़े मिठे मिठे वेग विच अपना शब्द गाउणा शुरू कीता, जिहड़ा आप सरवण कर रहे हो। यज्ञ अर्ज

अल्लाह ए वाहेगुरु तू वड्डा है करीम है दया करन वाला बेऐब है तेरे विच कोई ऐब नहीं तू दुनिया नु पालन वाला है ए दुनिया मुकामे फानी ए दुनिया खत्म होने वाली है।

नानक बगोयो जन तुरा तेरे जाकरा पाखा दुनिया खत्म होने वाली। ओ धर्म राजा तो वाला तो फड़ के ले जाओगे।

नानी की गल कहंदा है हाथ जोड़ उस खुदा दे अगे पेश हो अर्ज कर ओदी सिफत कर ओदे सेवका चाकरां दे पैरां दे।

मैं डर के काबे दी उस्तत कीती जिस तू ओ मुड़ के फिर अपनी असली जगह ते आ गया। इस गल दी गवाही वास्ते पढ़ो इसरार शरीयत दूजा हिस्सा।

ना ता केवल सिख ते हिंदू बल्कि मुसलमान तक अखी वेखी गल दी तरह मनदे हन। जिहा कि मौलाना अब्दुल रहीम साहिब बिस्मिल फिरोजपुरी अपनी एक पुस्तक विच गुरु जी दे मक्के जान दा जिक्र करदे हो।

ब्रह्मांड ब्रह्मांड पाताल आरंभे गुप्तो परगटी आएंदा। पहला गुप्त सी परमेश्वर कला, फिर खंड ब्रह्मांड पाताल ए बनाए, गुप्त तो परमेश्वर प्रगट हो।

परमेश्वर दा अंत पाण वास्ते कदी ना सोचो, पर हां उनू बेअंत समझ के ओदे नाल अपना मन जोड़ो। एक फकीर बड़ा परेशान, बहुत परेशान।

0: ya. Ondan da hoş ol kardeşler.
1: Savaş. Şere. Mal paran yanır.
2: Çok umdular.
0: Hadi cebine bak. El at sağ. Gel cebine.
3: मेरी बॉडी का देख रही पागल हो जाएगी।
4: मेरी सिंगिंग से कालेज से सीखी और नीले वालों।

झूठी हो सकती है, पर तोड़ा झूठी नहीं हो सकती। तोड़ा सुच्चा है, हाथ सुच्चा है, ना बंदा।

मुसलमान सत्संगी सज्जन पवित्र आत्मा गुरमुख सज्जन जितने भी माई पाई साहेब गुरु ग्रंथ साहब पात्र पवित्र कदम अंदर अमृत वेले दिया हाजरियां भर रहे हो सोने दरबार प्यारे दरबार सतगुरु जी के पवित्र चरणों का आनंद ले रहे हो। बहुत बख्शिश होवे बहुत गुरु कृपा करे ता अपनी सिर्फ सलाघा बख्शदा है सिर्फ सलाघा उन्होंने बख्शदा है जिन्हां उत्ते गुरु का कर्म होवे जिन्हां ते गुरु की बख्शिश मेर अति रहमत होवे उन्होंने ये सत्संग दियां कड़ियां नसीब होंदियां हन। कैसा आनंद है शब्द विच कैसा रस है शब्द विच पंक्तियां जो पढ़ रहे सां जपो ता एको नामा एक नाम नाली जोड़िया है एको नाम नाली सानू जोड़िया है होर किसे नाल नहीं जोड़िया। एको जप एको साला एक सिमर एको मनया एक के गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवान दूजा काहे सिमरिए जो जमे ते मर जाए एको सिमरो नानका जो जल थल रहा। पर सिमरना ही बड़ा मुश्किल बड़ा कठिन है कुल दुनिया के धंधे सौखे है एक प्रभु का सिमरन सब तो औखा जी बड़ा कठिन जी कोई समय ली एकाग्रता बख्श ली जितने मेरे सज्जन बैठे हो मिनट गिणवे रह गए 94 मिनट रह गए हैं वो मिनटा असा सफल करना है। सब तो पहला मन चित बिरतियां टिकाव विच लियाओ एक बार प्यार नाल आखो सदना आखिया जी आख लिया जी हूं किन्ना बिखड़ा है किन्ना मुश्किल है नहीं आखिया जाता सारियों को आख्या ही नहीं गया सारे आपो अपने ध्यान में ये कठिन जी कुल दुनिया के धंधे सौखे ने एक वाहगुरु आखना मुश्किल है एक वाहगुरु आखना कठिन है ये मैं नहीं कह रहा एक गुरु बाबा कह रहे रोज नहीं पढ़ते आखण औखा साचन बड़ा औखा है ये नहीं आख्या जाता आखो ना साधना वेख्या जी नहीं एवं तो नहीं बाबा जी बाणी कहते आप बचन सुनियो बुरे काम को ऊट खलोया बड़ा कर्म करना हो ना अधी राती दौड़ पैदा नींदर की परवाह नहीं सुस्ती की परवाह नहीं बरादरी की परवाह नहीं मां प्यो की परवाह नहीं रिश्तेदारां दी परवाह नहीं करना। बाबा जी कहंदे बुरे काम को ऊठ खलोया ते अगली पंक्ति पढ़ी जे कदी नाम की वेला पह पह सोया वाहगुरु आखण वेले नूं नींदर आ जांदी वाहगुरु आखण वेले नूं उंगलाण आ जांदी इहनूं सुस्ती पै जांदी इहदे कोलों नहीं आख्या जांदा इह कठिन सौदा जे इह बिखड़ा सौदा जे नाले सुस्त आदमी ते आख नहीं सकदा। सानूं ते कलयुग पिया होया सानूं ते कलयुग ने दबाया होया कुचलिया होया है पैरों थले लताड़िया होया है कलजुगी बंदा तो वाहगुरु नहीं कह सकता ये वही कह सकता है कि ते गुरु नानक जी कृपा होगी। एक बार आखो तुलसी जी का बचन पढ़िया जी बाबा जी ने कमाल कर दिती है तुलसी जी का बचन मैं कह रहा थानू तो आखण औखा साचा ना क्यों औखा है तुलसी जी ने शलोक उचारे है जदों मैं पढ़ना जदों मैं संतान सुनाना मैनू भी आनंद आंदा मैनू भी स्वाद आंदा की कहंदे तुलसी नाम जो राम को जिन्होंने रामायण लिखी है जिन्होंने राम का जीवन पेश किया है बयान किया है खोलिया है खुलासा किया है कहंदे तुलसी नाम जो राम को राम का नाम भगवान का नाम ईश्वर का नाम खुदा का नाम अल्लाह का नाम गाड़ का नाम परमेश्वर का नाम मेरे वाहगुरु का नाम नाम सारे ही उदे असा त्रेड़ा पाईया असा विथा पाईया असा दीवारा खड़िया कीतिया हुई नाम सारे उदे नाम में कोई फर्क नहीं साडे जपण में फर्क है। बड़ी प्यार की गल कह रहा तुलसी नाम जो राम को रीज लियो चाहे खीज भावे रीत किल ले भावे खीज किल ले रीत का मतलब की होया प्यार नाल आखना श्रद्धा नाल भावना नाल सत्कार नाल भाव नाल भक्ति नाल ते खीज का की मतलब होया थोड़ी जी एकाग्रता खीज का मतलब पंजाबी का लफ्ज
ਸੜ ਕੇ ਆਖਣਾ, ਕੁੜ ਕੇ ਆਖਣਾ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਆਖਣਾ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਆਖਣਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਮਜਬੂਰਨ ਉੱਠਦਾ, ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਲੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਲਸੀ ਨਾਮ ਜੋ ਰਾਮ ਕੋ ਰੀਜ ਲਿਓ ਚਾਹੇ ਖੀਰ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਲੋਕ ਉਚਾਰਿਆ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਫਲ ਦਿੰਦਾ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਲਸੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਲਸੀ ਨਾਮ ਜੋ ਰਾਮ ਕੋ ਰੀਜ ਲਿਓ ਚਾਹੇ ਖੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਪਰੈ ਸੋ ਉਗਤ ਹੈ ਉਲਟੋ ਸੀਧੋ ਬੀਜ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਜ ਸਿੱਧਾ ਪੈ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਛੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਠੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਪੂਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੀਜ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਖੋਏ ਆਖ ਲੈ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਅਵਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੋਲੋ ਸਾਸਾ, ਐਵੇਂ ਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਆਖੋ ਨਾ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮਾ।